सुपुरख एक ओंकार सत गुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्याव है सब त्याव है तुद जी हर सच्चे सृजनहारा। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा। एक दाते एक भिखारी जी सब तेरे जोज विडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी हाँ तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाणा। जो सेव है जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्याव है तुद जी से जान जुग मह सुख वासी।

मान एक नाट्य तस मूड मना हार बेसराता तेरे गुण गलया रहा ना हो जाते सत

ब्रह्मा शरण परे की रखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कब्यो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दरक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रत पार हमरे दुष्ट सब तुम गावहो आप हाथ द मोहे बचावहो सुखी बस मोरो परवार सेवक सिख सब करतार मोर अच्छा निज कर द करिया सब बैरन का आज संगरिया पूर्ण

चौन चौन सत्तर हमारे मारिया है। आप हाथ दे मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास न भरिया। हो जो सदा हमारे पच्छा, सरिया तो जो करियो रक्षा। राख लिहो मोहे राखण हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बवतरा, काल पाए शिवजी अवतरा। काल पाए कर बसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल योगी सब कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जागत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तैस ही को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पलमो बद कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। चीटी ते कुंचर अधूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पहचान, काट काट के पट पट की जान। जब उदकारख करा कर तारा, प्रजा तत तब देह अपारा। जब आकारख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंभ, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत भेदा। ताको कार पाहन अनुमानत, महा मूढ़ काज भेद न जानत। महादेव का कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पैव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पहन पहन तो है तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, के बद सजा प्रथम संसारा। एका रूप अनूप स्वरूपा, रंग पहो राव कही भूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, उद भुज खान बहर रज दीनी। कहूं फूल राजा हो बैठा, कहूं सिमट पहो शंकर अकैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप से अंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संग्रह। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखत है मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो काल को एक बार त्या है, ताके काल निकट न है। रचा होए ताहे सब काल, दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काल। कृपा दृष्ट तन जाहे निहार हो, ताके ताप तनक मह हार हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह स्व सका न को।

एक कहै मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहै हम एक न जान्यो सरी असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहा सब तो है बखान्यो दोहरा सगल द्वार को झाड़ कर गह तो

सतगुर तपाया सहज सेती मन वजिया वधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावण आईया शब्द हो तावो हरि केरा मन जिनी बसाया कह नानक आनंद होआ सत गुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारणा सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा हर ता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरा।

च तन्न वासुभयो सात संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जस का सब आधारो जे को खावे जे को पुंचे तस का होए उधारो ए वास्तव जी न जाई नित नित रख उधारो

पंजव आंतर गौर आराधना जय वाह जाप गौर नाव नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाव सतगुर सेती रत्या दरगाह पाइया ठाओ कहो नानक कृपा करे जतनो एह वत दे जग मैं

श्री वाहिगुरु साहिब जी, हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत शाड बिखै बेखो खाई, माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाट कीरत की, गुरु रामदास राखो सरणाई। सो कहो टल गुर सेवी है, अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसे गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए।

ठाकुर तुम अरदास जियो बल सब तेरी रास तुम मात पिता हम पारस तेरे तुमरी कृपा में सुख कनेर।

बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तो रहाओ विश्वे चसिया कड़िया पहरा थिती वारी माहो हुआ सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वेस राग तनासरी महला पहला गगन मैथाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल्यान लो पवन चबरो करे सगल बंदराए फुलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता सबदवा जंत पेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तोहे कौ सहस मूरत नना एक तोहे सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन

दारास्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंत सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ की रत की

निस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाए सिर्फ सुख संदी नूर अरसो पुरसो चखिया तुझ दिते सच्चे पातशाह मल जन्म

वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गौड़ी सुखमनी महला पंजवां, सलोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आद गुरे नमः, जुगाद गुरे नमः, सतगुरे नमः, श्री गुरुदेवे नमः। अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहि मिटावो। सिमरो जास विसंभर एक, नाम जपत अगंत अनेक। वेद पुराण सिमर सुधाखिर, कीने राम नाम एकाखिर। किनका एक जिस जीव सावे, ताकि महिमा गनी न आवे। कांखी एक दर्श तुहारो, नानक उन संग मोहे उधारो। सुखमनि सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम रहाओ। प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जमन असै। प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै। प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अंधन जागै। प्रभ कै सिमरन पौ न व्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै। प्रभ का सिमरन साधकै संग, सर्व निदान नानक हर रंग। प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा। प्रभ कै सिमरन तीर्थ इसनानी, प्रभ कै सिमरन दरगह मानी। प्रभ कै सिमरन होए सो भला, प्रभ कै सिमरन सुफल फला। से सिमरै जिन आप सिमराए, नानक ता कै लागो पाए। प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभ कै सिमरन उधरे मूचा। प्रभ कै सिमरन तिसना बुझै, प्रभ कै सिमरन सब किस सुझै। प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूरन आसा। प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद माहे समाये। प्रभ जी बस हैं साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभ को सिमरहें से तनवंते, प्रभ को सिमरहें से पतवंते। प्रभ को सिमरहें से जन परवान, प्रभ को सिमरहें से पुरख प्रधान। प्रभ को सिमरहें से बेमोहताजे, प्रभ को सिमरहें से सर्व के राजे। प्रभ को सिमरहें से सुखवासी, प्रभ को सिमरहें सदा अविनाशी। सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगै रवाला। प्रभ को सिमरहें से पर उपकारी, प्रभ को सिमरहें तिन सद बलिहारी। प्रभ को सिमरहें से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरहें तिन सुख बिहावै। प्रभ को सिमरहें तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरहें तिन निर्मल रीता। प्रभ को सिमरहें तिन अनद कनेरे, प्रभ को सिमरहें बसहें हर नेरे। संत कृपा ते अनदिन जाग, नानक सिमरन पूरा भाग। प्रभ कै सिमरन कारज पूरे, प्रभ कै सिमरन कब हो न चूरे। प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सहज समानी। प्रभ कै सिमरन निश्चल आसन, प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन। प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार। सिमरहें से जन जिन को प्रभ मया, नानक तिन जन सरनी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग वेद उपाय। हर सिमरन पए सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चहु कुंट जाते। हर सिमरन तारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन मह आप निरंकारा। कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। सलोक दीन दर्द दुख पंजना, घट घट

जपत दुख जाए। नानक बोले सहज सुभाए, चार पदार्थ जे को मांगे साधना की सेवा लागे। जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सद गावे। जे को अपनी शोभा लोरे, साध संग एहो मैं छोरे। जे को जन्म मरण ते डरे, साजना की सरणी परे। जिस जन का प्रभु दर्श प्यासा, नानक ताके बल बल जासा। सगल पुरख में

अपने मना जन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठत साध तिसह त्याई तिसह त्याय जो एक लख है इहा उहा नानक तेरी रखे जय प्रसाद।

साधक संग गोचर मिले, साधक संग सदा पर फुले, साधक संग आवे बसपंचा, साध संग अमृत रस पुंचा, साध संग हुए सब कीरेन, साधक संग मनोहर बैन, साधक संग न कतहूं तावे, साध संग सित मन पावे, साधक संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सुप्रसन्न।

कोट मध्ये गो ऐसा अपारस वैष्णो सो जिस ऊपर सुप्रसन्न विष्ण की माया ते होए भिन्न कर्म करत होवे निह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहू बल के च नहीं बाचे केवल भगत कीर्तन संग्राचे मन तने अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवर नाम जपावे नानक ओह वैष्णो परम गत पावे पंगौती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग मन ते बिन सह सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म साध सांग पापा मलक होवे तिस भगवती कीमत उत्तम होवे भगवंत के टहल करे नित नीत मन तने अर्पे बिसन परीत हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत कहो पावे सो पंडित जो मन पर बोध है राम नाम आत्म में सुध है राम नाम सार रस पीवे उस पंडित के उपदेश जग जीवे हर की

तिन पाया। सदा निकट निकट हर जान, सुदास दरगह पुरवान। अपने दास कौ आप कृपा करे, तिस दास कौ सब सूझी परै।

कोट देस उमंडल कई कोट ससियर सुर नक्षत्र कई कोट देव दानव इंद्र से शतर सगल समग्री अपने सुतार है नानक जिस जिस भावे तिस तिस निस्तार है कई कोट राजस तामस सातक

कई कोट दर्शन प्रप्यास जिनको मिल प्रभु अविनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको होए आपस प्रसन्न नानक ते जान सदा धन धन।

कई कोट कीने बोह पात प्राप्त हुए ब्रह्मा ही समात ताका अंत न जाने कोए आपे आप आप प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होत आत्म प्रगास कई कोट तत के बेते सदा निहारय को नेत्रे कई कोट नाम रस पीव है अमर भये सद सद ही जीव है कई कोट नाम गुण गावे है आत्म रस सुख

न आवे। काहु मानुख ते क्या हुए आवे, जो तिस पावे सोई करावे। इसके हाथ हुए ता सब किस ले, जो तिस पावे सोई करे। अनजान भिख्या मैं रचे, जे जानते अपना बचे। परमे भूला

निवाज जाका दृष्ट कछुना वै थे सतकाल दैतिस प्रगटा वै जाको अपनी करे बख्शीस ताका लेखन गने जगदीश जियो पेंट सब जिसकी रास कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बणत बनाई नानक जी वह देख बढ़ाई इसका बल नाही इस हाथ करण करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपुरा जियो ज्योतिष भाव सोई फुन थियो कबहू ऊच नीच मह बसै कबहू सोग हर करंग हसै

कबहू महा क्रोध विकराल, कबहू सर्व की होतरवाल, कबहू होय बहै बड़ राजा, कबू भिखारी नीच का साजा, कबहू अब कीरत में आवे, कबहू भला भला कहावे, ज्यो प्रभ रखे तिवही रहे, गुर प्रसाद नानक सच कहे, कबहू होय पंडित करे बख्यान, कबहू मोन धारी लावे ध्यान, कबहू तट तीरथ स्नान, कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान।

कोय। जब ही जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब तारे कुबैरी मीत तब लग नीचल नाही चीत। जब लग मोह मगन संगमाए तब लग तमराय देश जाए। प्रभु कृपा से बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हाँ छूटे। सहस घटे लिखा

संत के दुखन मत हुए मलीन, संत के दुखन सो बाते हीन, संत के हाथे को रखे न कोई, संत के दुखन थान भ्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक भी तरे, संत के दुखन तिमुख पवे, संतन के दुखन काग जो लवे, संतन के दुखन

चले। संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच नीच आए, संत की गाथा गुनाहे, नानक संत पावे ताओ पी गत पाहे, संत का निंदक महा अत ताई, संत का निंदक खिंट गन्ना पाई।

आए। संत का दुखी भूखा नहीं राजै, ज्यों भावक इधर नहीं तरापै। संत का दुखी छुटै अकेला, ज्यों बुआड़ तिल खेत माए दुहेला। संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सत मिथ्या कहत। कीर्त निंदक का तुर ही पया, नानक जो तिस भावै सोई थिया। संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी गौ दरगे मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है। संत

आनक बिघनते साधु राखे हर गुण गाय अमृत रस चाखे ओट गई संत दरियाया सर्व सुख नानक तेह पाया मृत कौ जीवाल नुहार भूखे कौ देव ते आधार सर्व निदान जाकी दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लहना पाहे सब के

तो योग हरण भरण जाका नेत्र फोर जिसका मंत्र ना जाने होर आनंद रूप मंगल सद जाके सर्व थोक सुनिए कर ताके राज में राज जोग में जोगी तब में तपीसर ग्रस्त में भोगी त्याय त्याय भगत सुख पाया नानक जिस पुरु का किने अंत न पाया जाकी लीला की मितना हे सगल दे भारी अवगा हे पिता का जन्म के जाने पूत सगल पुरु अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जन दे जन दास नाम त्यावै से ते गुण में जाको परमाए जन्म मरे फिर आवे जाए।

नाम के तारे सगले जानत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे सिमरत भेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे नाम के तारे सगले आकार, नाम के तारे

रूप सत जाका सत सान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सजा की बाणी सत पुरख समाय समाणी सतगुंड की रचना सत मूल सत सत उत्पत सतकरणी निर्मल निर्मली जिसे बुझा दिशा सत भली सतनाम प्रभु।

आप सातु किया सब सातु आपे जाने अपनी मित गात जिसकी श्रेष्ठ सुकर्ण हार अवर न बूझ करत विचार करते कि मित न जाने किया नानक ज्योतिष भावे सोवर तिया विषमन विषम भय विषमाद जिन बूझ से आया स्वाद।

चरण सातु सत परसनुहार पूजा सातु सत सेवदार दर्शन सातु सत पेखनुहार नाम सातु सत्यावनुहार आप सत सतारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभु भगता सुरत सत सत जस सुनता

सेवक दैतिस प्रगटाया, निकी गिरी मैं कर राख है, पसम कर लश्कर कूट राख है, जिसका सास ना काट दे आप ताको राखत दे कर हाथ, मानस जतन कर्तव्य बात, जिसते जिसके कर्तव्य वृथे जात, मारण राखे और न कोई सर्व जिया का राखा सोहे, काहे सोच कर रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख विढाणी, बारंबार बार प्रभ जपिया, पी अमृत मन तन त्रपिया,

कहो नानक सही जन पूरे मन मेरे जन की ओट लेहे मन तन अपना तिन जन देहे जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्ब थोक का दाता जिसकी शरण सर्व सुख पाव है तिसके दर सब पाप मिटाव है अवर सियान सगड़ी छाड तिस जन की तू सेवा लाग आवन जान न होवी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा श्लोक सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाओ तिसके सांग सिख उधर नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिखी करे प्रतपाल सेवक गुर सदा दयाल सिखी गुदुरमत मल हिरै गुरबचनी हर नाम उचरै सतगुर सिखी

संत नाम करो विचार एक सिमर नाम धार और पास मीत विसारो चरण कमल में और तारो कारण कारण सो ब्रह्म सम्राट दृढ़ कर गो नाम हर बात युतन संचो हो भगवान्त संजना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंडता वह सोधन हर सेवा ते पावे है जिस को

न लगै कोए। जाकर जब सह हर सोए कलता दी ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ भवन से पूर्ण हो आस। भगत भाया तुम प्रगास तित कर जब सह विनासी कहु नानक काटी जम फासी तद विचार कहे जन साचा जन्म मरे सो काचो काचा। आवा गवन मिटे प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव यौ रतन जन्म का हुए उदार हर हर समय प्राण आधार। अनक भावना छूटन हारे सिमर साध भेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन मजत नानक फल पाए। संग न चल तिर तना तू क्या लौटावे मूर्ख मना सुत मीत कुटुंब अर बनता इन ते कहो हो तुम कवन सुनाथा। राज रंग माया बेसार इन ते कहो हो कवन छुटकार अस हस तिर ससवारी झूठा डंप झूठ बात सारी। जिन दी तिस बुझे न बिगाना ना बिसा नानक पछताना गुर की मात तू ले आने भगत बिना वो डूबे सियाने। हर की भगत करो मन मीत निर्मल हो तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे। जन्म जन्म के किल बिक जाहे आप जपो अवरा नाम जपावो हो।

न दूजा। जब होवत प्रभु केवल तनी तब बंद मुगत कह किसको कनी। जब ये कहे हरगम पार तब नरक सुर को कौन उतार। जब निर्गुण पर सह सुभाए तब से सकत कहो गिन ठाए। जब आप है आप अपनी ज्योत रहे तब कौन कवन कत ढरे। आपन तदाप का नहार नानक ठाकुर अगम पार। अपन आशीष को अपन आसन तय जन्म मरण को कहा विनाशन। जब पूर्ण कथा प्रभु सोए तब समकित रात कहो किस होए। जब अवगुतर को चलो प्रभु एका तब चित्र कवित किस पूछित लेखा। जब नाथ निरंजन गोचर गाते तब कहाँ जुटे कौन बंधन बाते। आपन आप ही चर्जा नानक आपन रूप आप ही प्रजा। जय निर्मल पुरुष पुरुष पद होता जय बिन मैल कहो क्या तूता। जय निरंजन निरंकार निर्वाण कौन गुमान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश जय छोटी तलगत कहो कीस। जय जो स्वरूपी जो संग संभावे जय किसे पुकों देवता वै।

आठ पहर प्रभिको निरा मिटिया गया मिसरा सुन देव सावो मन छे नानक फल पावो हो हत पलत दो लेहो सवार राम नाम अंतर अवतार पूरे गुरु की पूरी देखिया।

जाए तिसे तिसते दूर कहा को जाए उबरे राखन हार त्या है निर पोछ पैसा को मिटाए प्रभु कृपा ते प्राण ही छुटाए जिस पर रागिस नाही दुख नाम जपत मन हो सुख जिंदा जाय मिटाए हूं काज जन को न पहुंचन हार सिर कोटाड़ा गुरु सूरा नानक ताके कार्य पूरा मद पूरी मृत जाके श्रेष्ठ दर्शन पे श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक प्रवान प्रधान

तरण माय आकाश भयाल सर्वलोक पूर्ण व्रतपाल बंदे पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आगे तैसा कर्म पावन पानी बसंत माहे चार कुंड तिसे समाये तिसे पे नहीं गोठाओ गुरु प्रसाद नानक सो पाओ।

आस अनित त्यागो तरंग साधना की तुर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अगन सागर तरो हर तन के परडे भंडार नानक पूरे नमस्कार खेम कुशल सहजानंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो अमृ गुण गोबिंद अमृत रस पियो जिचित नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का ही आधार

रंग जय जय शब्द नाहवा जय सुन सुन अंत गये प्रभु गय जय प्रगटे गोपाल महा तो कह माथे नानक जय तिन के साथे।

खेप हमारी। प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत, सुखमनी सहज गोबिंद गुण नाम, जिसमन बसै सोहुद निदान।

उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह जाप श्री मुखवाक पातशाही दसवीं छपै चंदत्व प्रसाद चक्र चिन्ह अर बर्ण जात अर पात नहिन जहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत के अचल मूर्त अनुभव प्रकाश अमितोज कहे जय कोट इंद्र इंद्राण शाह शाहान गणित जय त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत त्व सर्व नाम कथ कवन कर्म नाम बरनत सुमत पुजंग पर्यात छंद नमस्तुंग अकाले नमस्तुंग कृपाले नमस्तंग अरूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अपेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाये नमस्तंग अजाये नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे नमस्तंग अनामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग अपीते नमस्तंग अवाहे नमस्तंग अडाहे नमस्तंग अनीले नमस्तंग अनादे नमस्तंग अछेदे नमस्तंग अगाधे नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अपारे नमस्तंग सोएके नमस्तंग अनेके नमस्तंग अपूते नमस्तंग अजूपे नमस्तंग निर्कर्मे नमस्तंग निरपरमे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निरपेशे नमस्तंग निर्नामे नमस्तंग निरकामे नमस्तंग निर्दाते नमस्तंग निर्गाते नमस्तंग निर्धूते नमस्तंग अपूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग निर्तापे नमस्तंग अथापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग अगाहे नमस्तंग अबाहे नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग सुजोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अपंगे नमस्तंग अगम्ये नमस्तस्तरम्ये नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमजबे नमस्तस्त अजबे अदेसंग अदेसे नमस्तंग अपेसे नमस्तंग निर्दामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्व काले नमो सर्व दयाले नमो सर्व रूपे नमो सर्व भूपे नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्तस्त देव नमस्तंग अपेव नमस्तंग अजन्मे नमस्तंग सुमन्मे नमो सर्व गौने नमो सर्व पौने नमो सर्व रंगे नमो सर्व पंगे नमो काल काले नमस्तस्त्याले नमस्तंग अबर्णे नमस्तंग अबर्णे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्व तंदे नमो सत अबंधे नमस्तंग निरसाके नमस्तंग निर्वाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तस्त रागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्व सुखं नमो सर्व पोखं नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता नमो जोग जोगे नमो पोग पोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले चाचरी छंद त्व प्रसाद अरूप हैं अनूप हैं अजू हैं अपू हैं अलेख हैं अपेख हैं अनाम हैं अकाम हैं अधे हैं अपे हैं अजीत हैं अपीत हैं त्रिमान हैं निदान हैं त्रिवर्ग हैं असर्ग हैं अनिल हैं अनाद हैं अजय हैं अजाद हैं अजन्म हैं अवर्ण हैं अपूत हैं अपर्ण हैं अगंज हैं अपंज हैं अचूज हैं अचंज हैं अमीक हैं रफीक हैं अतंध हैं अबंध हैं निर्भूज हैं असूज हैं अकाल हैं अजाल हैं अलाह हैं अजाह हैं अनंत हैं महंत हैं अलीक हैं निरश्रीक हैं निर्लंब हैं असंभ हैं अगम हैं अजम हैं अपूत हैं अछूत हैं अलोक हैं अशोक हैं अकर्म हैं अपर्म हैं अजीत हैं अपीत हैं अबाह हैं अगाह हैं अमान हैं निदान हैं अनेक हैं फिर एक हैं पुजंग पर्यात छंद नमो सर्व माने समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे अनंगी अनाथे निरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे प्रभंगी परमाथे समस्ति विपूते कलंक मिनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्रपाणि नमो अस्त्रमाणि नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते
नमो नित्य नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो शाह शाहं नमो पूपो पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं स्नानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो हिष्टे हिष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध कर्ता अधो ऊर्ध अर्धं अगंग ओघर्ता परं परं परमेश्वरं प्रोच पालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अचेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्ततामं से तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं पुजंग पर्यात छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ती निदाने नमस्त्वं निर्नाथे नमस्त्वं प्रमाथे नमस्त्वं अगंजे नमस्त्वं अपंजे नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोको रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व पोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृष्णं नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिज्जे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी चरपर छंद त्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत तर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल तर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं पुक्ता सर्वं युक्ता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुवाल छंद त्व प्रसाद आदरूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्व मान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जत्र तत्र विराज ही अवधूत रूप रसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद असेख देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा होए फैलो अनुराग नाम काम विहीन पेखत तहां मुह न जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मानत ताहे एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जान ही जे वेद और कतेव रूप रंग न जात पात सो जा नहीं कह जेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन चक्कर बकर फिर चतर चक मानई पुर तीन लोक चौदह के बिख्या जग जाप ही जिह जाप आद देव अनाद मूर्त थाप्यो सब जिह थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रचो स्वयं भव गण पंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेस अंगराग न रंग जा कह जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनाथम एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्वगंता सर्वहंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र न जान ही जिहि रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जा कह नित पाखत नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र नावही वह चित मधुपार छंद तो प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनुपह प्रकाश निस्दिन अनास आजान बाहु शाह अनशाह राजान राजपान अनपान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग आभा अपंग गतमित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपय निकाम अतदुत प्रचंड मित गत अखंड आलिस्य कर्म सादृश्य धर्म सर्वा प्रणाढ्य अंडन पाढ़ चाची छंद तो प्रसाद गोविंदे मुकुंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निर्नामे अकामे पुजंग प्रयात छंद
चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र परती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र मान्या चत्र चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय अजन्म अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र पृथ्वी से अधि से अदृश्य अकृश भगवती छंद तो प्रसाद कथते क्या छिज देश है क्या पिज पेस है क्या गंज कर्म है क्या पंज परम है क्या पिज लोक है क्या आदित्य शोक है क्या अवधूत वर्ण है के विभूत कर्ण है के राजंग प्रभा है के तरमंग तुजा है के अशोक वर्ण है के सर्वा पर्ण है के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुपोनूप है के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रंग विहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा कर रही मैं रिहा कह के पाक बेअब है के गैब उल गैब है के अफूल गुनाह है के शाहन शाह है के कारण कुनिंद है के रोजी देहंद है के राजक रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य के सर्वत्र दान के सर्वत्र गौन के सर्वत्र पौन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कलीम है के परम फहीम है के आकल आलाम है के साहिब कलाम है के हुसन वजू है तमाम रुजू है हमेशा सलाम है सलीख मुजाम है गनीम उल शिकस्त है गरीब उल परस्त है बिलंद उल मकान है जमीन उल जमान है तमीज उल तमाम है रुजू उल निदान है हरीफ उल अजीम है रजाए की यकीन है अनेक उल तरंग है अपेद है अपंग है अजीज उल निवाज है गनीम उल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुजुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तो सलाम है सदैव अकाम है निर्वाद स्वरूप है अगाध है अनूप है उवंग आद रूप है अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिप्रगंग त्रिवाधे अगंजे अगाधे सुभंग सर्व पागे सुसर्वा अनुरागे त्रिपुक्त स्वरूप है अछिज है अछूत है के नरकंग प्रणास है पृथ्वीवल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विपुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विपुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपरम है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अपूत है अदूत है अनास है उदास है अतंद है अबंध है अपक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है निश्चिंत है सुनिंत है अलिख है अधिक है अलेख है अपेख है अडाह है अगाह है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट छंद त्व प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग कर्मं सर्वंग तर्मं सर्वंग युक्ता सर्वंग मुक्ता रसावल छंद त्व प्रसाद नमो नक नासे सदैव प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विपूते परमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विपूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न पात न तात न मात न जात न पात निसाकं सरीक है अमितो अमीक है सदैव प्रभा है अजय है अजा है भगवती छंद तो प्रसाद के जहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशो सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनुल चराग है के कामुल करीम है के राजक रहीम है के रोजी देहंद है के राजक रहिंद है करीमुल कमाल है के हुसनुल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरीबुल शिकन है हिरासुल फिकन है कलंकं प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब के राह है के नरकंग प्रणास है बहस्तुल निवास है के सरबुल गवन है हमें सुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है
परम परम ईस है, समस्तुल अधीस है, अधिसुल अलेख है, हमेशुल अपेख है, जिमीनुल जमा है, अमीकुल इमा है, करीमुल कमाल है, के जरूरत जमाल है, के अचरंग प्रकाश है, के अमित तो सुभाष है, के अजब स्वरूप है, के अमित तो विभूत है, के अमित तो पसा है, के आत्म प्रवाह है, के अचलंग अनंग है, के अमित तो अपंग है, मधुपार छंद तो प्रसाद, मुन मन प्रणाम गुणगन मुदाम, अरबर अगंज हर नर प्रभंज, अनगन प्रणाम मुन मन सलाम, हर नर अखंड पर नर अमंड, अनुपव अनास मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम, जल थल मुदाम अनचिज अंग आसन अपंग, उपमा पार गतमित उदार, जल थल अमंड दिस विस अपंड, जल थल महंत दिस विस बेअंत, अनुपव अनास तिरत तर तुरास आजान बाहु एक कैसदा हो, ओंकार आद कथनी अनाद खल खंड ख्याल, गुरु पर अकाल कर कर प्रणाम, चित चरण नाम, अनचिज गात आज जना बात, अनचंज गात अनरंज बात, अनटुट पंडार अनठट अपार, आडीठ तरम अत टीठ कर्म, अन प्रण अनंत दाता महंत, हर बोल मना छंद तो प्रसाद, करुणालय है अर्कालय है, खलखंडन है महमंडन है, जगतेश्वर है परमेश्वर है, कल कारण है सर्व उपारण है, त्रित के तरण है, जग के कर्ण है, मन मान्य है जग जान्य है, सर्वंग पर है सर्वंकर है, सर्वपास्य है सर्वनास्य है, करुणा कर है विश्वंभर है, सर्वेश्वर है जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है कलखंडस है, परते पर है करुणा कर है, अजपा जप है, अथपा थप है, अकृताकृत है, अमृता मृत है, अमृता मृत है, करुणा कृत है, अकृताकृत है, तरणी तृत है, अमृतेश्वर है परमेश्वर है, अकृताकृत है, अमृता मृत है, अजबाकृत है, अमृता अमृत है, नर नायक है खलकायक है, विश्वंभर है करुणालय है, निरपनायक है सर्वपायक है, पहुपंजन है अर्गंजन है, रिपतापन है जप जापन है, अकलंकृत है सर्वाकृत है, कर्ता कर है हरता हर है, परमात्म है सर्व आत्म है, आत्म बस है जस के जस है, भुजंग प्रयात छंद, नमो सूरज सूर्जे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो वृंद वृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राजसंग ताम संग शांत रूपे, नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो ज्युत युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते, कलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे, एक अक्षरी छंद, अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश, अगंज अपंज अलख अपख, अकाल दयाल अलेख अपेख, अनाम अकाम अगाह अडाह, अनाथे प्रमाथे अजोनी अमोनी, न रागे न रंगे न रूपे न रेखे, अकर्मं अपरमं अगंजे अलेखे, भुजंग प्रयात छंद, नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे, अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे, निर्कामं विभूते समस्तुल स्वरूपे, कुकर्मं प्रणासी सुतर्मं विभूते, सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी, करे मुल्क निंदा समस्तुल निवासी, अजाय विभूते गजायब गनी में, हरियं करीं करी मूल रही में, छत्र चक्रवर्ती छत्र चक्र पुगते, स्वयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते, दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे, सदा अंग संगे अपंगं विपूते, दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे, सदा अंग संगे अपंगं विपूते, वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह, एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं तो प्रसाद, सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिदान के, देख फिरेउ कर जोग जति के, सूर सुरार्दन शुद्ध सुधादिक संत समूह अनेक मति के, सारे ही देश को देख रहे हो मत को, न देखियत प्राणपति के, श्री भगवान की पाए कृपा होते, एक रति बिन एक रति के, माते मतंग जरे जर संग, अनूपो तंग सुरंग सवारे, कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के, गौन को जात निवारे, पारी पूजान के पूप पली विद न्यावत शीस न जात बिचारे, एते पये तो कहां पये पूपत, अंत को नांगे ही पाए पदारे,
जीत फेरा सब देश दिसान को बाजत टोल मृदंग नगारे गुंजत गूल गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गण नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे तीरथ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक विशेख वेद पुराण कतेब कुरान जिमीन जमान सबान के पेख पौन हार जति जत तार सब सो विचार हजार क देख श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख सुध सिपाह दुरंत दुबह सो साज सनाह दुर्जान दलेंगे पारी गुमान परे मन मैं कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर अरीन मरोर मोहासन माते मतंगन मान मलेंगे श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अपचार हसार की तार पछैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गढ़ान के तोड़ नहार सो बातन ही चकचार लवैया साहेब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सो एक दिवैया दानव देव फने धन साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जात तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरा जग सत्र सब अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नराधप जोन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजाधिक दान अनेक स्वयं बरसाज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्ण सची पतांत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पत के प्रस हैं पग ते नर फेर न देह तरेंगे कहां पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो नात फिरयो लिए सात समुन्द्रन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिख्यान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पहन पूज तरयो सिर काहू लै लिंगरे लटकायो काहू लख्यो हरा वाची दिशा मह काहू पछा को शीस निवायो को बतान को पूज तो है पस को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग से भगवान को भेद न पायो कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दर अच्छा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सब तुम काव हो आप हाथ दे मोहे बचाव हो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सब है करतारा मोर अच्छा निज कर दे करया सब बैरन को आज संगरया पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम है छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो वर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरे है मरण काल का त्रास निवरे है हूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जु करे हो रच्छा राख ले हो मुहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दशकंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिस्न प्रकाशा सकल काल का किया तमासा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताही हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जचन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोह बध कियो
कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाना कट कट के पट पट की जाना जब उत्कर्ष करा करतारा प्रजा तर्त तब देहे अपारा जब आकर्ष करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देहे तर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तार आप अपनी बूझ उचार तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंभ आद अनिल अनाद असंभ ताका मूल उचारत पेदा जाको पेव न पावत वेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपनी बुध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखा न जाय पसारा केह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कही पूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हव बैठा कहूं सिमट पयो शंकर इकैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आद जुगाल स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो बार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच करो रणकाता जे अस्तुल तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते है ताके काल निकट न है रच्छा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छाच वैसे कह न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल पास ते तहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दै लेहो उबारी सर्व ठोर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूरन सुभराता किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दोखे अनकोछ है करता श्री अस्तुज जब पय दयाला पूरन करा ग्रंथ तत्काला मन वांछत फल पावे सोई दुख न तिसे व्यापत कोई अड़ेल सुने गुंग जो याहे सोरस न पावई सुने मूड चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पहो निकट न तिन नर के रह हो जो या की एक बार चौपई को कह चौपई संबत सत्रह सहस पणि जय अर्ध सहस पुन तीन कहे जय पाद्रव सुधी अष्टमी रववारा ती सतुद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहें हम एक न जान्यो श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं न कहियो सब तो हे बखान्यो दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां शब्दो तंगावो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया
ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ।

लिवै बाज हूं क्या करे बेचारिया, तुद बाज समर्थ कोय नाही कृपा कर बनवारिया, एसनु होर थाउ नाही शब्द लाग सवारिया, कह नानक लिवै बाज हूं क्या करे बेचारिया, आनंद आनंद सबको कह आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया, अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सच्चा सवारिया, कह नानक एहो आनंद है आनंद गुर ते जानिया, बाबा जिस तू देह सोई जन पावे, पावे ता सो जन देह जिसनो, होर क्या कर है बेचारिया, एक भरम भूले फिर है दह दिस एक नाम लाग सवारिया, गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिना पाणा पावे, कह नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावे, आवो संत प्यारे हो अकथ की करह कहानी, करह कहानी अकथ केरी, कित द्वारे पाईऐ तन मन तन सब सौंप गुर को, हुक्म मन्या पाई है हुक्म मन्यो गुरु केरा, गावो सच्ची वाणी कह नानक सुनो संत हो कथे हो अकथ कहानी, ए मन चंचला चतराई किन ना पाया, चतराई ना पाया किन तू सुन मन मेरिया, ए माया मोहनी जिन एत भरम फुलाया, माया ता मोहनी तिने कीती जिन ठगोली पाईया, कुर्बान कीता तिसे विटहो जिन मोह मीठा लाया, कह नानक मन चंचल चतराई किने ना पाया, ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, एहो कुटंब तू जे देखदा चले नाही तेरा नाले, साथ तेरा चले नाही तिस नाल क्यों चित लाईऐ, ऐसा कम मूले न कीचै जित अंत पछोताईऐ, सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरा नाले, कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले, अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया, अंतो न पाया किने तेरा अपना आप तू जानहे, जी जंत सब खेल तेरा क्या को आख वखाणे, आखह ता वेख सब तू है जिन जगत उपाया, कह नानक तू सदा अगम है तेरा अंत ना पाया, सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया, जी जंत सब तुद उपाए एक वेख परसन आया, लब लोभ अहंकार चुका सतगुरु भला पाया, कह नानक जिसनो आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया, भगता की चाल निराली चाला निराली भगता केरी, बिखम मार्ग चलना लब लोभ अहंकार तज त्रिसना, बहुत नाही बोलना खनियो तिखी वालो निकी एत मार्ग जाना, गुर प्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना समाणी, कह नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली, ज्यो तू चलाए तिव चलै स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे, जिव तू चलाए तिवै चलै जिना मार्ग पावे, कर कृपा जिन नाम लाए से हर हर सदा त्यावे, जिसनो कथा सुनाए अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे, कह नानक सच्चे साहिब ज्यो पावे तिवै चलावे, एहो सोहेला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहेला, सतगुरु सुनाया एहो तिन कै मन वसिया जिन तुरहो लिखिया आया, एक फिर है कनेरे कर है गल्ला गली किन ना पाया, कह नानक शब्द सोहेला सतगुरु सुनाया, पवित होए से जना जिनी हर ते आया, हर ते आया पवित होए गुरमुख जिनी ते आया, पवित माता पिता कुटुंब सहत स्यों पवित संगत सबाइया, कहंदे पवित सुनदे पवित से पवित जिनी मन वसाया, कह नानक से पवित।

पौड़ी पड़े हुए गुनहगार तो मिसाद न मारिए, जेहा काले कालना ते वे होना उपचारिए, ऐसी कला न खेडिए जित दरग गया हारिए, पड़िया ते उमिया विचार के विचारिए, मुहे चले सो के मारिए,

सुख कने कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवान सगल समागिरी तुमरा सूतर तारी तुम ते हो ऐसो आगे आका।

सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, ते मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो हो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो हो शरणाई। परम सन्मान योग प्यारी साल संगत जीओ, अज लड़ीवार चल रहे श्री सहज पाठ साहिब 174 अंग तो आरंभ किए जाने ने। गौड़ी मांझ महला चौथा, चोजी मेरे गोविंदा, चोजी मेरे प्यारे आ, हर प्रभ मेरा चोजी जीओ। आओ सारियां संगतां मिल करके श्री सहज पाठ साहिब नाल जुड़ना करिए जी। सतनाम वाहिगुरु जी। गौड़ी माज महला चौथा, चोजी मेरे गोविंदा, चोजी मेरे प्यारे आ, हर प्रभ मेरा चोजी जीओ। हर आपे कान उपाएंदा मेरे गोविंदा, हर आपे गोपी खोजी जियो, हर आपे सब

आपे जगत उपाइंदा मेरे गोविंदा हर आप खेलै बहु रंगी जियो एक ना भोग पोगाइंदा मेरे गोविंदा एक नगन फिरै नंग नंगी जियो आपे जगत उपाइंदा मेरे गोविंदा

हर आपे भगत कराईंदा मेरे गोविंदा, हर भगता लोच मन पूरी जियो, आपे जल थल वरतदा मेरे गोविंदा, राव रहया नहीं दूरी जियो, हर अंतर बाहर आप है मेरे गोविंदा, हर आप रहया पर पूरी जियो, हर आत्म राम पसारिया मेरे गोविंदा, हर वेख आप हदूरी जियो, हर अंतर वाजा पौन है मेरे गोविंदा, हर आप वजाए त्यों वाजै जियो, हर अंतर नाम निदान है मेरे गोविंदा, गुरु शब्दी हर प्रभ का जय जियो, आपे शरण पवाएंदा मेरे गोविंदा, हर भगत जना राखला जय जियो, वड भागी मिल संगती मेरे गोविंदा, जन नानक नाम सिद्ध का जय जियो, गौड़ी माज महला चौथा, मैं हर नामे हर बिरहों लगाई जियो, मेरा हर प्रभ मित मिले सुख पाई जियो, हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जियो, मेरा नाम सखा हर भाई जियो, गुण गावो संत जियो, मेरे हर प्रभ केरे जियो, जप गुरमुख नाम जियो, भाग वडेरे जियो, हर हर नाम जियो, प्राण हर मेरे जियो, फिर बौड़ ना पवजल फेरे जियो, क्यों हर प्रभ वेखा मेरा मन तन चाओ जियो, हर मेलो संत जियो, मन लगा पाओ जियो, गुर शब्दी पाइये हर प्रीतम राओ जियो, वड भागी जपनाओ जियो, मेरा मन तन वडड़ी गोविंद प्रभ आसा जियो, हर मेलो संत जियो, गोविंद प्रभ पासा जियो, सतगुर मत नाम सदा परगासा जियो, जन नानक पूरियाड़ी मन आसा जियो, गौड़ी माज महला चौथा, मेरा बिरही नाम मिले ता जीवा जियो, मन अंदर अमृत गुरमत हर लीवा जियो, मन हर रंग रतड़ा हर रस सदा पीवा जियो, हर पायड़ा मन जीवा जियो, मेरा मन तन प्रेम लगा हर बाण जियो, मेरा प्रीतम मित्र हर पुरख सुजान जियो, गुर मेले संत हर सुगड़ सुजान जियो, हो नाम विटो कुर्बान जियो, हो हर हर सज्जन हर मीत दसाई जियो, हर दसो संतो जी हर खोज पवाई जियो, सतगुर तुठड़ा दसे हर पाई जियो, हर नामे नाम समाई जियो, मैं वेदन प्रेम हर बिरहों लगाई जियो, गुर शरदा पूर अमृत मुख पाई जियो, हर हो दयाल हर नाम त्याई जियो, जन नानक हर रस पाई जियो, महला पंजवां राग गौड़ी गुआरेरी चौपदे एक ओ अंकार, सतगुर प्रसाद किन बिद कुशल होत मेरे भाई, क्यों पाईए हर राम सहाई रहाओ, कुशल ना ग्रह मेरी सब माया, ऊचे मंदर सुंदर छाया, झूठे लालच जन्म गवाया, हस्ती घोड़े देख विगासा, लश्कर जोड़े ने बखवासा, गल जेवड़ी हो मैं के फासा,
ਰਾਜ ਕਮਾਵੈ ਦਹਿ ਦਿਸ ਸਾਰੀ, ਮਾਣ ਰੰਗ ਭੋਗ ਬਹੁ ਨਾਰੀ, ਜਿਉ ਨਰਪਤ ਸੁਪਨ ਪੇਖਾਰੀ, ਏਕ ਕੁਸਲ ਮੋਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਤਾਇਆ, ਹਰ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਹਰ ਕਿਆ ਭਗਤਾਂ ਪਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹੋ ਮੈਂ ਮਾਰ ਸਮਾਇਆ, ਇਨ ਬਿਦ ਕੁਸਲ ਹੋਤ ਮੇਰੇ ਪਾਈ, ਇਉ ਪਾਈਏ ਹਰ ਰਾਮ ਸਹਾਈ, ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਗੌੜੀ ਗੁਵਾਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਿਉ ਭ੍ਰਮੀਏ ਭ੍ਰਮ ਕਿਸ ਕਾ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਰਵਿਆ ਸੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਉਭਰੇ ਮਨਮੁਖ ਪਤ ਖੋਈ, ਜਿਸ ਰਾਖੇ ਆਪ ਰਾਮ ਦਿਆਰਾ, ਤਿਸ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਕੋ ਪਹੁੰਚਣ ਹਾਰਾ, ਰਹਾਓ ਸਭ ਮੈਂ ਵਰਤੈ ਏਕ ਅਨੰਤਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੁਖ ਸੋ ਹੋਏ ਅਚਿੰਤਾ, ਉਹ ਸਭ ਕਿਸ ਜਾਣੈ ਜੋ ਵਰਤੰਤਾ, ਮਨ ਮੁਖ ਮੋਏ ਜਿਨ ਦੂਜੀ ਪਿਆਸਾ, ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭਵੈ ਤੁਰ ਕਿਰਤ ਲਿਖਿਆਸਾ, ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਤੈਸਾ ਖਾਸਾ, ਦੇਖ ਦਰਸ ਮਨ ਭਇਆ ਵਿਗਾਸਾ, ਸਭ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਗਾਸਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰ ਪੂਰਨ ਆਸਾ।

की ओट, निमुख माहे होवे तेरी छोट, सदा निकट कर ते सुनो जान, प्रभ की आज्ञा सत कर मान, गुर कै बचन मिटावो आप, हर हर नाम नानक जप जाप, गौड़ी गुवारेरी महला पंजवां, गुर का बचन सदा।

के गुण गाय, गुर का बचन जी कै साथ, गुर का बचन अनाथ को नाथ, गुर कै बचन नरक ना पवै, गुर कै बचन रसना अमृत रवै, गुर का बचन प्रगट संसार, गुर कै बचन न आवै हार, जिस

सगल कटां के अंतर जामी, सर्ब सुखां सुख साचाए, गुर उपदेश मन मै लेह, जाको राम नाम लिव लागी, कहो नानक सो तन वड भागी, गौड़ी गुवारेरी महला पंजवा, सुन हर कथा उतारी मैल, महापुनीत पै सुख सैल, वड़े भाग पाया साध संग, पार ब्रह्म स्यों लागो रंग, हर हर नाम।

जन्म जन्म के केल विख गए, सर्ब निदान पेखे मन माहे, अब ढूंढन काहे को जाहे। प्रभ अपने जब पै दयाल, पूर्ण होई सेवक काल। बंधन काट किए अपने दास, सिमर सिमर सिमर गुण तास। एको मन एको सब ठाए, पूर्ण पूर रहे हो सब जाए। गुरपुर सब परम चुकाया, हर सिमरत नानक सुख पाया। गौड़ी गुआरेरी महला पंजवा, अगले मुए से पाछै परे। जो उबरे से बंद लक खरे, जेहे धंधे मैं ओए लपटाए। उनते दुगण दिड़ी उनमाए, ओ बेला कछ चीत न आवे। बिन सजाए ताहू लपटावे रहाओ। आशा बंदी मूरख देह, काम क्रोध लपटो स्नेह। सिर ऊपर ठाडो धर्म राय, मीठी कर कर बिखिया खाए।

जन पावे कर कृपा जिसे आप दिवावे। हर हर नाम जाकै हृदय वसै दुख दर्द तेह नानक नसै। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा बहुत दर्ब कर मन ना अगाना। अनक रूप देख नह पतियाना पुत्र कलत्र उर्ज्यो जान मेरी। ओह बिनसै ओए पसमै टेरी बिन हर भजन देखो बिललाते। त्रिग तन माया संग राते रहाओ।

नेत्र पसारे ता निरारथ काजा। ज्यों राखा खेत ऊपर पराए, खेत खसम का राखा उठ जाए। उस खेत कारण राखा कड़े, तिस कह पाले कछु ना पड़े। जिसका राज तिसै का सुपना, जिन माया दीनी तिन लाई तृष्णा। आप बिनाहे आप करे रास, नानक प्राबे आगे अरदास। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, बहु रंग माया बहु बिद पेखी। कलम कागत स्यान पलेखी, महर मलूक होए देखिया खान। ताते ना ही मन त्रिपतान, सो सुख मुको संत बतावो। तृष्णा बुझे मन त्रिपताव हो रहाओ। आस पवन हस्त असवारी, चोवा चंदन सेज सुंदर नारी। नट नाटिक आखारे गाया, ता मैं मन संतोख न पाया। तखत सभा मंडन दोलीचे, सगल मेवे सुंदर बागीचे। आखेड़ बिरत राजन की लीला, मन ना सुहेला परपंच हीला। कर कृपा संतन सच कहया, सर्ब सुख एहो आनंद लहया। साध संग हर कीर्तन गाई है, कहो नानक वड भागी पाई है। जाके हर तन सोई सुहेला, प्रभ कृपा ते साध संग मेला। रहाओ दूजा गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा। प्राणी जान ए तन मेरा, बहर बहर ओआहू लपटेरा। पुत्र कलतर गिरस्त का फांसा, होन न पाइए राम के दासा। कवन सोबित जित राम गुण गाए, कवन सुमत जित तर ए माए। रहाओ जो

पीवै बौरा, अमृत नाम जाने कर कौरा, साधु संग कै नाही नेर, लख चौरासी भरमता फेर। एक जाल फहाए पंखी।

पंजवा तौ कृपा ते मार्ग पाई है प्रभ कृपा ते नाम ते आई है प्रभ कृपा ते बंधन छूटै तौ कृपा ते हौ मैं टूटै तुम लावो तो लागे सेव हम ते कछु न होवै देव राव तुद पावै ता गावा बाणी तुद पावै ता सच वखाणी तुद पावै ता सतगुर मैया सर्व सुखा प्रभ तेरी दया जो तुद पावै सो निर्मल करमा जो तुद पावै सो सच धर्मा सर्व निदान गुण तुम ही पास तू साहिब सेवक अरदास मन तन निर्मल होए हर रंग सर्व सुखा पावो सत संग।

तुम संग हीत, तू मेरी पत, तू है मेरा गहना, तुझ मेर निमख न जाई रहना, तू मेरे लालन, तू मेरे प्राण, तू मेरे साहिब, तू मेरे खान रहाओ, जो तुम राखो ते भी रहना, जो तुम कहो सोई मोहे करना, जह पेखो तहां तुम बसना, निर्भउ नाम जपो तेरा रसना।

सूने नगर परे ठगहारे। उन ते राखै बाप न माई, उन ते राखै मीत न पाई, दर्ब सियाणप न ओए रहते, साध संग ओए दुष्ट वस होते, कर कृपा मोय सारंग पान, संतन तहूर सर्ब निदान, साबत पूंजी सतगुर संग, नानक जागै पार ब्रह्म कै रंग।

हे काज तुम्हारे दे निबाहे रहाओ। सब ते ऊच जाका दरबार, सगल भगत जाका नाम आधार। सर्व व्यापत पूर्ण धनी, जाकी शोभा कट कट बनी। जिस सिमरत दुख डेरा टह, जिस सिमरत जम किशु ना कह। जिस सिमरत होत सूके हरे, जिस सिमरत डूबत पाहन तरे। संत सभा को सदा जयकार, हर हर नाम जन प्राण आधार। कहो नानक मेरी सुनी अरदास, संत प्रसाद मोको नाम निवास। गौड़ी गुवारेरी महला पंजवा, सतगुर दर्शन अग्न निवारी। सतगुर पेट तहो मैं मारी, सतगुर संग नाही मन डोले। अमृत बाणी गुरमुख बोले, सब जग साचा जा सच मैं राते। शीतल शांत गुर ते प्रब जाते रहाओ। संत प्रसाद जपै हर नाओ, संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ। संत प्रसाद सगल दुख मिटे, संत प्रसाद बंधन ते छुटे। संत कृपा ते मिटे मोह भरम, साध रेण मजन सब धर्म। साध कृपाल दयाल गोविंद, साधा मैं ए हमरी जिंद। कृपा निध कृपाल ते आवो, साध संग ता बैठन पावो। मोहे निर्गुण कौ प्रभ कीनी दया, साध संग नानक नाम लया। गौड़ी गुवारेरी महला पंजवा, साध संग जप्यो भगवंत। केवल नाम दियो गुरमंत, ताजे अपमान पै निरवैर। आठ पहर पूजो गुर पैर, अब मत बिनसी दुष्ट बेगानी। जब ते सुनिया हर जस कानी रहाओ। सहज सुख आनंद निदान, राखन

रखे कर कर्म पेख बोले सुने सब आप साध सदा संग ताको मन जाप संत प्रसाद पयो परगास पूर रहे एक गुणतास कहत पवित्र सुनत पुनीत गुण गोविंद गावे नित नीत कहो नानक जाको हो किरपाल तिस जन की सब पूर्ण काल गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा बंधन तोड़ बुलावे राम मन में लागे साच ध्यान मिट कलेश सुखी होए रही है ऐसा दाता सतगुर कही है सो सुख दाता जे नाम जपावे कर कृपा तिस संग मिलावे रहाओ जिस होए कृपाल तिस आप मिलावे सर्ब निधान गुरु ते पावे आप त्याग मिटे आवन जाना साध के संग पार ब्रह्म पछाणा जन ऊपर प्रभ भय दयाल जन की टेक एक गोपाल।

के गुण गाए। कर कृपा प्रभ अंतर जामी, सुख निदान हर लख स्वामी। जी जंत तेरी शरणाई, नानक नाम मिले वड़ियाई। गौड़ी गुवारेरी महला पंजवा। जी जुगत जाके है हाथ, सो सिमरो अनाथ को नाथ। प्रभ चित आए सब दुख जाए, पै सब बिन सह हर कह नाए। बिन हर पाओ काहे का मान, हर बिसरत काहे सुख जान। रहाओ जिन तारे बहु तरण आगास, जाकी जोत जी परगास। जाकी बख्शना मेटै कोय, सिमर सिमर प्रभ निरपौ होए। आठ पहर सिमरहो प्रभ नाम, अनक तीर्थ मज्जन इशनान। पार ब्रह्म की शरणी पाहे, कोट कलंक खिन में मिट जाहे।

सन्मान योग सत्संगी जनों, मैं जिन्हां शब्दों का कीर्तन कर रहा हाँ, ये शब्द आप संगत विचों ही संगत वालों कुछ बच्चों ने मैनू हुक्म किया, मैं इन्हां शब्दों का गायन करके सुनावा जी। सतगुरु बख्शिश करे जो गावया सुनिया है इसकी विचार साढ़े हिरदे वस। तो एक शब्द की हाजिरी होर मैं आप जी के नाल मिलकर लगावांगा जी। हम चक्र गोविंद के ठाकुर मेरा पारा, इस शब्द का मैं हुक्म होया सी कि बच्ची वालों। तो पिछले दो दिन तो तीन दिन तो दस रहे आप संगत की सेवा में हाजिर हैं। अज का ही इस वीरी का सतगुरां दे इस मुबारक दरबार के अंदर आखिरी प्रोग्राम है। जदों जदों भी मालिक की बख्शिश हो मैं हाजिर हुंदा हाँ। प्रबंधक वीर का मैं हिरदे दीआं गहराइयां तो धन्नवाद करदा हाँ। वीर नरेंद्रपाल सिंह जी ते उन्हां दे समूह जिन्ने भी साथी हैं, मेरे अति सत्कारयोग एम जी डॉक्टर पाठिया, कमलजीत कौर पाठिया, जिन्हां दे सहयोग नाल आप संगत दी सेवा दा सुभाग प्राप्त हुंदा है। आप जी बहुत प्यार दिंदे हो, बहुत माण दिंदे हो, मैं तुहाडे प्यार दा सारयां दा माण दा मैं ऋणी हाँ, मैं तुहाडा कर्जदार हाँ। जिवें जिवें समां मिलदा रहेगा मैं आप संगत दी सेवा च हाजिर होवांगा। जिवें कि आप जी ने दस्सिया है, कल दीआं खबरां विच वी आप जी नूं पता लग रहा है कि जो कोरोना वायरस है इसका एक होर रूप बदल के आया है, जिस तों आपां सुचेत रहना है, अपना भी ध्यान रखियो, दूसरों का भी ध्यान रखियो। डरना भी नहीं, पर बेपरवाह भी नहीं, लापरवाह भी नहीं होना, करते तो भरोसा रखना। पुरख्या करे कारोबार तेरा प्रवासा, तू जन के है संघ, पर सुचेत जरूर रहना है, अपनी सेहतां का ध्यान रखियो, जरूरत अनुसार ही बाहर निकलियो, जिदा घरे रहो, बच्चों के रहो, बच्चों के नाल कोई गुरमत दी गल्लां करो, कोई गुरु दी गल्लां करो, कोई चंगियां गल्लां करो, कोई चंगियां बच्चों नूं गल्लां सिखाओ। तो पिछले समय तो सारा संसार संताप भोग रहा है, मालिक की कृपा है वो जाने, पर आपां सुचेत रहना है। और जिन्होंने वैक्सीन लवा ली है ठीक है, जो नहीं है तो लवा लो, दवाई असर तो कर दी है। तो मैं तो भाई साहब कल दे लवा के आया, मैं बूस्टर लवाया होया, इन्होंने सैकंड डोज लवाई हुई, बुखार सानू दोनों चढ़िया होया। पर जो मैं अक्सर मैं बेनती करता रहिंदा हाँ, कीर्तन बंदगी है। गुरु नानक साहब ने कोई होर कर्म नहीं किया परमात्मा की बंदगी वास्ते, ना घर छड़ के जंगलों च गए, ना भुखे रहे, किसी तरह का कोई कर्म कांड नहीं किया, सिर्फ तो सिर्फ कीर्तन किया। सो कीर्तन नू ध्यान रखना, आपां कन रस नहीं बनाउणा, इबादत है, बंदगी का तरीका सानू सतगुरां ने बख्शिया है। तो जदों बंदगी करदे होइए मालिक की मेहरामत हुंदी है, जे वह सतगुरु एकाग्रता बख्श देवे तां ध्यान रखना इस गल का, उसकी कृपा तो बिना एकाग्रता भी नहीं होंगी। जे एकाग्रता बन जाए तो फिर दुख सुख भी भुल जाते हैं। तो तुहाडियां संगतां दीआं असीसां दा सदका आप संगत की सेवा की है। एक शब्द का होर गायन करके फिर समाप्ति होगी। अगला जो भी प्रोग्राम है वह आप जी ने प्रबंधक वीर दस देंगे। हम चाकर गोविंद के ठाकुर मेरा पारा, कि बच्चों ने मैंने हुक्म किया कि मैं किसी वड्डे ने कहा हुंदा तो फिर भावा मैं, क्योंकि मैंने कई बार लगता है कि मैं उन्हां शब्दों का ही कीर्तन कर रहा जिहड़े थोड़े दिन पहला सुनाए सी, पहला भी सुनाए। पर कई बार मेरे नाल एक इस तरह की घटना हुई, मैं मिसी सागा टोरंटो कीर्तन कर रहा सी, एक बच्चा बार बार एक शब्द वास्ते कह रहा सीगा, मैंने पता नहीं शब्द विसरिया होया सी जां मैं ध्यान नहीं दिता, मैं शब्द का गायन ना किया। तो समाप्ति हो गई, अनंत साहब भी जाप हो गया, अरदास भी हो गई।
तो बच्चे ने जड़ा रौला पाया वो रोई जावे सन पता ना लगे क्यों रोंदे सारे देखा। तो वो माता पिता जी आए कहन लगे भाई साहब तुसी बच्चे साडे ते शब्द नहीं गाया इस करके रोंदा है। तो फिर मैं समाप्ति तो बाद फिर कीर्तन शुरू किया। सो न्याणियां तों डर लगता है इन्हां ये बड़े डाढ़े हैं न्याणे वड्डे नाराज हो जाएंगे तो उन्होंने मना लवेंगे न्याणे नहीं नाराज करने। सो बच्चों वालों हुक्म सी इस शब्द का मैं गायन करके समाप्ति कराँगा।

की पावन हजूरी विच दोने बच्चे सुभायमान सतगुरु जी हजूरी विच सच चुके हैं जी। सो परिवार नूं हुक्म होया सी कि जा तू मेरे वल है ता क्या मैं शंदा तू सब कुछ मैं सौंपिया जा तेरा बंदा

श्री वाहे गुरु साहिब जीओ सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ डंडौत बंधन निकबार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ राग वड हंस महला पहला

तह तुम राखन हारे पावक सागर अथा लहर में तारो तारन हारे मात गर्भ में आपन सिमरन दे तह तुम राखन हारे पावक सागर अथा लहर में तारो तारन हारे माधो

कीते को मेरा सम्मान करण हार तृण जाने तू दाता मांगन को सगली दान दे प्रभ पाने खिन मह अवर खिन मैं अवरा अचरज चलत तुम्हारे रूड़ो गूड़ो गहर गंभीरो ऊंचो अगम अपारे साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी

0: जाए। आप जपो अगर नाम जपाओ सुनत तह तह जपाओ
1: सावक
0: तेरी उदरत में बिनत जाए उमे
1: बिखेल
0: सग ली मना सात संग पावे सही धना निरंतर एक हो देख खाओ नानक जाके मस्तक लेकर गाओ अनंत मंथन जाप एक बलवंत अनेक विस्तार एक थे भय एक अराज करा चत गए
1: चरण तो है।